0: सुनिया पक्की 420 सुनिया पक्की 420 मार मार के अरे मार मार के चप्पल मेरी कर दी चप्पल मचंती दुनिया 420 दुनिया पक्की 420
1: चुकी है रीत निराली

0: चाहिए मोटा बकरा मोटर साड़ी सुर में जानी। जहाँ भी तकड़ा इंजन देखा करती शंटम शंटी दुनिया 420 दुनिया पक्की 420।
1: छोड़ो टेंशन
0: दुनिया 420 दुनिया पक्की 420।

कौन हो भाई? बीवी बच्चे बहन और भाई सब है मतलब के शहजाई, जेब गरम तो यार हजार, कड़की हो तो कौन हो भाई? एक दिन इनको माल न दो फिर देखो फंटम की दुनिया 420, दुनिया पक्की 420, दुनिया पक्की 420, मार के चप्पल मेरी कर दी चप्पल, दुनिया 420।

दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

मेरा प्यार एक तरफा, श्रेया घोषाल एंड अमाल मल्लिक. एंड अमाल हैव ओक द म्यूजिक सेल्फ गेमाक्ट एंड मनोज मोंटाशेर दी हैव देसे टेक्स्ट गेस्क्रीवन फॉर हेन. या सो वाक सिंगत अमाल नीट, हाय इज मेस्टल द म्यूजिक डायरेक्टर, मा सो सी यू मार. अलीन वर्ट हे नोग नीट गेव्राग्ड फॉर द बॉलीवुड इंडस्ट्री एक्ट टू गान सिंगन. Of hij wil dat gewoon niet, dat kan ook. Hij weet dat hij goed kan zingen. In elk geval, Anirudh Ravichandra krijgen we nu. Hij heeft de muziek gemaakt voor Arijit Singh en Shilpa Rao. Chalia.

बिन कोटरावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं सुन वालों। तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खाई बिनकोट रहा तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है। नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने।

Raza Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो और उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो और उजाला रेडियो.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

मुंड संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

तेरा चेहरा जब नजर आए, अरिजीत सिंह की आवाज और फिल्म का नाम सनम तेरी कसम। आपके साथ साथ और हजारों लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो को।

तुम्हारी आरजू के पलकों में कोई पलता है, तुम्हारी आरजू के साये में हाँ कोई पलता है। मोहित चौहान की आवाज में गीत को आप सुनिए, श्वेता पंडित हिस्सा लेंगे। इट्स यू आर उजाला रेडियो।

0: बस बस बस सांपे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है तो
0: चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

0: सारे गामा वन टू थ्री फोर
1: सारे गामा मा सारे गा का सारे मा
0: मंगा रेसा
1: सारे गामा मा सारे गा का सारे मा
0: मंगा रेसा
1: मंगा रेसा
0: मंगा रेसा
1: मंगा रेसा
0: मंगा रेसा
1: मंगा रेसा
0: मंगा रेसा।

बिनको ट्रावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं सुन वालों, तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खाई बिनकोट ट्रावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर ये शानदार सिनेमा जो कि पेश किया गया है. चेक फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन उजाला.nl, उजाला रेडियो, डीएबी प्लस पर हॉलैंड भर में.

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: ये है उजाला रेडियो, रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

0: तू देख ले यार brazzafest.nl.
1: Now I don't want to go back. Fall in love with she. I come down to Trinidad and see a sweet lady.
0: Programa jo hai ga lamba chaura hai ga be aapke hum bataila. कौन कौन बेंचेस खेलेगा ऑल टॉप फॉर्मेसीज सब जबर जबर फॉर्मेसीज जो है नीदरलैंड में सब वहां पे रहेगा अख्तर अलका इको नामीसी हैगा ससेंदर अलमा ऑल टॉप फॉर्मेसीज दी फर्दीनन हम ऑफ सोन स्टेज पे स्टैंड प्लस ऑफ एस के मेन स्टेज पे वहां पे रहेगा दुई गो हाल दो एरियाज हाल इन जो हैगा बहुत लंबा चौड़ा बड़का स्टेज ओमन रहेगा भी और एक तवेदा हाल जोन हैगा वो रहेगा एक्ट फूड कोर्ट ओकर मतलब हैगा फूड लाउंज कोर्ट हमें चाहिए बोले के तू वहां पे लाउंज कर सकेगा तू वहां पे अपन खाना पीना खाइए और तू कुर्सी तफरा तोड़ खाती रहेगा वहां पे जहां पे तू रोज तक से बैठ के इवन चेस खाई सकेगा अपन परिवार के साथ मैं चुफरिंद डोंट मिस दिस हियर विल यू एफ बाय साइन विद द हेल फैमिली Het is natuurlijk een familiefestival. Dat houdt in dat iedereen welkom is. De kinderen zijn welkom, maar ook Aji Aja.

कम सालों मालदार थे इधर एक ही इवेंट पे यार तो के ना हुवा गली गली जाए के ना तू एगो में ही है ई वाली में ही है रसा फेस्ट में ही है ऐसे इस अलमाले नहीं केर और कली है rasafest.nl तू देख ले डायरेक्ट तू देख ले शनिचर और इतवार के रहेगा और खुशतस के लास्ट वीकेंड शनिचर 29 augustus और इतवार zondag 30 augustus Den Haag शहर में इंदौर एकदम अंदर रहेगा दोस्त चाहे खराब वेयर चाहे मोई वेयर Perfect. Ekdam perfect. Khana pina. Alle stentjes erbij. Alle top artiesten zijn erbij. Hier heiga Sujal ki awaaz mein aap sunega. Hij is erbij natuurlijk live on stage. Hila deega londua. बहुत मोई गाइस ना ये गनवा हम जाने ला ब्याह के गाना बा मम मोई लगेगा सुनत

Live on stage, Brasa Vesper. Prachtig, beautiful. Wat een artiesten, allemaal. Op één festival. Het grootste Hindoestaans festival. Isalke, 2026 keer. Den Haag शहर में आपके शहर में यार Den Haag शहर में हम लोग आइला Den Haag Den Haag हम आइला तू भी आइए और ये लड़कियां के नाम हम आपके बता दें नहीं तो तू भी सोचिए के गावेगा यार हम ना जानेला सुन ले सुन सुन

सारेगामा रेकॉर्ड्स रोशना रानी सुनियर फरदीन विदय कालपू ससेंद्र आलम अलबै अबीद अनुपा हंस डायमंड्स के साथ लेजेंड्स के साथ दुल लेजेंड्स के साथ निजाम फासिल इबो किंग लायो और एक्सप्रेस के साथ मिस्टर ब्लैक मुक्का सिंह मुकेश लेडी संजना द बैंड के साथ किरण केदार मिस अंश बेचोन स्टीव केदार यस एंड शिवम राजा राम नाथ लग्नतराज के साथ देश शिवम उमर एंड स्क्वाड्स उमर नथुलक मैथुयाना वशिता सूर्य के साथ सूर्य बैठक गाना ग्रुप के साथ सुझल उमराव लाइव ऑन स्टेज बरासा फेस्ट पर एक्सक्लूसिव के साथ संजय जोधा रन

Food Plaza en Lounge, natuurlijk heerlijke snacks. Sweets. Natuurlijk ook fashion. Lifestyle, gifts. Sieraden. Brasa vibes. Doe a je. Eind augustus, zaterdag. 29 augustus en zondag 30 augustus. Den Haagse Hermeyer. Gia. Trade and Event Center. अंदर रहेगा इबर्स जोन हैगा मेला जोन हैगा अंदर में रहेगा तू जाला कहेगा यार तू जानेगा जबरदस्त तो आई सकेगा ओपनबार फरफूर से बहुत मखलक हैगा मैं तू आई सके अपन ऑटो से भी तू आई सके ट्रेम से भी जोन दनाख में मी रहेगा तू जानेगा ट्रेम 16 बस 24

Sanjay Jodha, live on stage. बड़ा सा फेस्ट पर यार कौन ये उखनीता वेल हम वहां पे रहबे और ये गनवा जा आएगा बॉय द हाई कवोन डांसर हम काम धंधा वहां छोड़ के हाई कवोन डांसर द बेनिक ऑफ द डांस फ्लोर यही तो होक

लाइव ऑन स्टेज ब्रासा फेस्ट पर आप सुनेंगे ये गीत मैं संजय जो था एक्सक्लूसिव के साथ यस मैं सन आई म्यूजिक फॉर्मेट से एक्सक्लूसिव लाइव ऑन स्टेज वाओ वट अ मोमेंट गाट दैट वर्डन हम तो के बिलीव करिला हिला देखो हम लोग यार दनहा शहर हम लोग हिला देखो

0: सर मुका मुका सिंह मुकेश मैं तो फरमान सिंह एक्सप्रेस लाइव ऑन स्टेज
1: मत होश है
0: टाइटस ब्रदर्स ऑफ एस नेचुरली
1: चारों
0: Dat wil je allemaal toch niet missen. Gewoon on one stage. One platform. One area. Nee, two areas, ja. Not one area. Two areas. Two days. Do din ka program. Lamba Chaura. Bahut hi zabarjast. Alle toppers van Nederland. Alle toppers bij elkaar. Tijdens Brasa Fest. En natuurlijk mag je dit niet missen. सबसे बड़का हिंदुस्तानी इवेंट इस साल के इंदौर अंदर में दोस्त ना बाहर यार बाहर लोग वैसे रिसिको तू जानेगा कभी हवा कभी बरसात कभी गर्मी वैसे तदा लेकर मेटल का बिगी बिगी बिगी बिगी बड़का वाली हाल में परकेर प्रॉब्लम लोस बहरे तू खोल सकेगा जगह फॉलो तू ओवे से ये कहने का प्रॉब्लम तो ऑटो सही है हम उन तुके जगह मिलेगा बहरे फॉलो सुन गाना मुका सिंह व्हाट अ सिंगर यार एंड इन नीदरलैंड हैव एन आंटल टॉप सिंगर्स नाउ deze hoort er echt bij hoor en een geweldige formatie ook live formatie mooi gitaarspel jongens Willen we toch meemaken live?

ग्रुप है यार, मुखा सिंह मुकेश एक्सप्रेस के साथ नेचुरली लाइव ऑन स्टेज टाइटंस ब्रासा फेस्ट. अच्छा समय कम है दोस्त, ik ga toch weer eventjes overswitchen naar ja, laten we hier naartoe gaan. Ja toch? Mag niet ontbreken. Denk je dat?

शोला बदन पहलू में आ जाओ। फिल्म गुमनाम का गीत और गीत के गाने वाले शारदा एंड मोहम्मद रफी साहब, उजाला रेडियो का प्रोग्राम

मुझको तुम जो मिले, हाँ मुझको तुम जो मिले तो ये बहार समझो मिल गया। और गीत के गाने वाले हेमंत कुमार जी के साथ गीता दत्त और फिल्म डिटेक्टिव से निकाला हुआ।

और जी में आता है कि जी भर के तुम्हें प्यार करूं, फिल्म ठोकड़ का गीत, और आप सुने मोहम्मद रफ़ी साहब से, इसी फिल्म ठोकड़ से निकाला हुआ एक और गीत आप सुनेंगे मुकेश जी से, और ये उजाला रेडियो है।

प्रोग्राम में सुनेंगे कुमार सानू जी के जरिए अलका याग्निक भी साथ देंगे कि तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। उजाला रेडियो है ये, तू जाने है तो।

हर एक सुनने वालों को उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग में एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम आगाज करते हैं। आप सभी सुनने वालों को अदाबर्स और नमस्कार। मैं हूँ आपका हम सफर निशा। आज मैं एक के बाद एक हल्के स्वरों में नगमे चुने हैं। आप इत्मीनान से सुकून के साथ प्रोग्राम से लुत्फ उठाइए, मजे लीजिए। ये प्रोग्राम आम्स्टरडम स्टूडियो से नशर किया जाता है। शुरू करती हूँ भजन से, तर्स है राम राम तो सबका रखवाला, जब जब भी ये मन घबराया तूने आन संभाला।

तू सब का रखवाला। भजन आपने अभी मोहम्मद रफी साहब से सुना। खूबसूरत जिंदगी खुद ब खुद नहीं बन जाती है, बल्कि उसकी तामीर रोजाना की दुआओं पर होती है। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से।

सुनते हैं कि मिल जाते हैं हर चीज दुआ से। प्रोग्राम की शुरुआत में पेश था भक्ति और मजहबी संगीत। अब हम गजल शौकीन वालों के लिए कुछ गजलें सुनवाएंगे। मोहब्बत मोहब्बत करो तो इतनी शिद्दत से करो कि अगर वो छोड़ भी जाए तो किसी और का ना हो पाए।

है प्यार करेंगे, शहनशाह गजल नवाज उस्ताद मेहदी हसन से पेश थी ये गजल। कश्ती भी नहीं बदली, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौके सफर ऐसा एक अरसे से यारो, मंजिल भी नहीं पाई, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए।

जिस भाई दिल गर मैं चाहूं। दिल छू लेने वाले गजल पेश थी नयारा नूर की मीठी आवाज में। कुछ नहीं मिलता जितनी मर्जी वफा कर लो किसी से, जब वक्त वफा ना करे तो वफादार भी बेवफा हो जाते हैं। तेरी बेवफाई का शुक्रिया, मुझे तूने जीना सिखा दिया।

सफाई का शुक्रिया। चंदन दास से पेश थी ये गजल, कलाम था सबा अफगानी का। अगली गजल सुनाने को जा रहा है शहद भरी आवाज में विनोद सहगल।

अंदाज में पेश थी ये गजल जिगर मुराद आबादी का कलाम और जगजीत सिंह की मौसिकी थी। अब हम आपको ले चलते हैं उस सुनहरी दौर में जिसमें आपकी मीठी यादें जुड़ी है। गीत सुनाने से पहले अर्ज है, फिर हुआ तमाशा गली में आज सुबह, वो थे मेरे सामने, मैं उसे वो मुझे देख रहे थे। फिर क्या हुआ? हाँ, वही जो अक्सर होता आया है, लोग हमें देखते रहे क्योंकि वो गली पार करके सामने थे।

दौर का गीत पेश था मुखर्जी और चित्तलकर की आवाजों में पेश था ये दो गाना, सी रामचंद्र का सजाया गीत और गोपाल सिंह नेपाली का बोल था। दिल के कोने में दबी हुई यादें फिर ताजा तो हो गई होगे ना, ये दास्ताने गमे दिल कहाँ कहीं जाए, यहाँ तो खुल के कोई बात भी ना की जाए, ऐ गमे दिल क्या करूं।

सरदार मल्लिक का संगीत रचना गायिका थी आशा भोसले। ये सच है पहले प्यार ही बसा रहता है ख्यालों में। तुम मेरी बेबसी देखो मुझे तुमसे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता।

मन्ना डे से पेश था ये नगमा और ये फिल्म बहके कदम से लिया है उषा खन्ना की मौसिकी थी नगमात धर्मेश दत्त का। खो गया जाने कहाँ आरजुओं का जहाँ, ढलता हुआ सूरज भी अब कहने लगा है मुझसे, कल फिर से आऊंगा एक नई सुबह के संग, नई उम्मीदों के संग।

हो गया जाने कहाँ, रोंते खड़े हो जाते हैं ऐसे नगमे सुनकर। महान शायर राजेंद्र कृष्ण का गीत रचना, संगीत रचना मदन मोहन का, आवाज थी हेमंत कुमार की। अब लीजिए पेश है मोहम्मद रफी साहब से अगला गीत।

सभी सुनने वालों को निशा फिल्मी दुनिया में इस्तकबाल करती है, स्वागत करती है। फिल्मी दुनिया में हम कई हफ्तों से महान गायक मुकेश चंद माथुर के बारे में बयां कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में शायद आप सुने होंगे कि मुकेश का अरमान था अदाकार बनने को, इसलिए वो बिना अपने वालदैन के इजाजत से बॉम्बे चले गए थे। बॉम्बे में वो अदाकार मोतीलाल के साथ रहते थे। मोतीलाल को मुकेश की आवाज पसंद था। वो चाहते थे कि मुकेश संगीत पर तवज्जो दे, इसलिए जब मोतीलाल ने फिल्म पहली नजर में काम कर रहे थे तो उन्होंने इस फिल्म के पेशकश और हिदायतकार से दरख्वास्त किया था मुकेश को इस फिल्म में गवाने को। फिल्म पहली नजर में संगीत दिया था अनिल विश्वास। मुकेश से मिलने के बाद संगीतकार अनिल विश्वास ने मुकेश से दिन तारीख तय कर चुके थे रिकॉर्डिंग के लिए। पिछले प्रोग्राम में आप शायद सुने होंगे कि रिकॉर्डिंग का दिन मुकेश ने अनिल विश्वास को घंटों इंतजार कराया था। उसने मुकेश को स्टूडियो में ना देखकर बहुत नाराज हुआ था। फिर अपने नौकर को हिदायत दी मुकेश को कहीं से भी ढूंढ कर लाने को। मुकेश जब नौकर को देखा तब उसे याद आया कि आज उनका रिकॉर्डिंग था और वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे। कहानी दिलचस्प है, आगे सुनेंगे एक गीत के बाद।

राकेश की आवाज में आपने अभी ये गीत सुना। तो जैसे हमने इस गीत से पहले कहा, मुकेश ने जब नौकर को पहचाना तो अपने दोस्तों से घबराया हुए कहा कि आज उनका रिकॉर्डिंग था और साहेब अनिल विश्वास इंतजार कर रहे होंगे। फिर दौड़ते दौड़ते मुकेश ने स्टूडियो पहुंचा। स्टूडियो में सन्नाटा छाई हुई थी। वो एक अपराधी की तरह नजरें झुकाए अनिल विश्वास के सामने खड़े थे और कहा, साहेब मुझे माफ कर दो। अनिल विश्वास ने मुकेश को इतना जल्द माफ नहीं किया। मुकेश को खूब भला बुरा कहा, उनके गलतियां को एहसास दिलाए कि वो गैर जिम्मेदारी की काम किया था। मुकेश रोने लगे, रोते रोते कई बार माफी मांगा। फिर अनिल विश्वास ने उनसे कहा, तुम जाकर अपना हाथ मुंह धोकर मेरे पास स्टूडियो में वापस आना। बिना एक शब्द कहते हुए चुपचाप मुकेश स्टूडियो में आए, अनिल विश्वास के सामने खड़े हो गए और रिकॉर्डिंग के लिए एकदम तैयार हो गया था। मुकेश ने अपने दिल के सारे दर्द एक साथ समेट कर इस गीत में डाल दिया और इस गीत का नतीजा आप खुद सुनिए।

दिल जलता है तो जलने दो, कितना दर्द कितना कशिश था मुकेश की आवाज में। लगता था जैसे सारी दुनिया का दर्द उसमें समाई हुई थी। इस गीत को जब आप गौर से सुनेंगे तो इसमें कुंदन लाल सैगल की गायकी महसूस करेंगे। मुकेश का ये गीत सुनकर सैगल अपने आप पर फखर महसूस किया। उसे यकीन होने लगा कि उनकी आवाज को नकल करने वाले और लोग हैं। लेकिन जब वो मुकेश से खुद मिलकर बातें की तब सैगल को एहसास हुआ कि मुकेश उससे बेहतर फनकार था। फिर वो अपना हारमोनियम अपना अमानत उसे तोहफा में दिया। मुकेश की संगीत सफर कैसे शुरू हुई हमने बयां किया। उससे गाने में कोई शौक नहीं था। वो अदाकार बनना चाहते थे लेकिन उनकी तकदीर उसे क्या से क्या बना दिया। वो हम सबकी एक रूहानी सौगात है। आज भी हम उनके नगमों से लुत्फ उठाते हैं।

अब हम मुकेश की निजी जिंदगी की पर्दे के पीछे जरा सा झांक कर देखेंगे ये कैसे थी। ये तो आप जरूर जानना चाहोगे। बात है नेहतीन द्रियफेयर तक की। मुकेश की अभी कोई खास पहचान नहीं थी। बॉम्बे में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और ऐसे मुश्किल की घड़ी में इस हालात में वो अपने परिवार के पास दिल्ली नहीं जाना चाहते थे। वो कुछ बनकर जान दिखाना चाहते थे। हिम्मत उनका बुलंद था। वो हिम्मत कभी नहीं हारा। बस एक वक्त की रोटी वो कमा लेते थे। तो इसी दौरान मुकेश की मुलाकात मन्नू भाई त्रिवेदी से हुई। मुलाकातों का सिलसिला दोस्ती में बदल गई और इसी तरह एक दूसरे के घर में आना जाना की राह भी बन गई। मन्नू भाई त्रिवेदी की एक खूबसूरत बहन थी बच्ची बेन। पहली नजर में आपस को देखते ही प्यार की कौंपले फूटी। इसका एहसास किसी को नहीं हुआ, पर प्यार ऐसा जज्बा है जो अंदर ही अंदर सुलगता है, जिसका एहसास उस वक्त होता है जब जुदाई की घड़ी रूबरू होती है। क्योंकि वो दिन जब मुकेश की मुलाकात बच्ची बहन से नहीं हो सकती थी, तो उसे लगता था कि कहीं वो कुछ खो गया है। और ये एहसास बच्ची बहन को भी महसूस होती थी। पर हाँ, किसी ने खूब कहा, फूल की खुशबू और इश्क की रंगत कभी छिपाए से नहीं छिपती। कब तलक? आखिर एक दिन मन्नू भाई त्रिवेदी और घर वालों को इस खामोशी मोहब्बत पर यकीन हो गया, एहसास हो गया था कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मन्नू भाई को मुकेश की ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा। मुकेश से जब घर वालों इसके बारे में जिक्र किए तो वो घबरा गए और अपना जुबान से कुछ कहा नहीं। मन्नू भाई ने मुकेश पर इतना नाराज हुआ, उसे खबरदार किया और कहा, आज से तुम्हारे लिए इस घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। पर इश्क पर किसी का जोर चला है जो इसे रोक सके? मुकेश को अपनी बच्ची बहन से जुदा होकर मजनू की हालत जैसे हो गया था। बेचैन था, अपने प्यार को दीदार के लिए घंटों तक बच्ची बहन के घर के सामने खड़े रहते थे और प्यार का दर्द उसे कैसे महसूस हो रहा था इस गीत में मुकेश ने गाकर हमें सुनाए।

जी हाँ, इस गीत के एक एक शब्द मुकेश की प्रेम कहानी से जुड़ी हुई थी। ये सच है, हकीकत है। इश्क पर जोर नहीं, फिर भी कितने हैं जो प्यार का दुश्मन हो जाते हैं। बच्ची बहन मुकेश की दिल की चैन था, जब तक वो अपने प्यार का एक झलक ना देख लेता, दर्द से वो हिलता नहीं था। ठंड और बारिश की परवाह वो नहीं करते थे। मुकेश और मन्नू भाई की दोस्ती में दरार पड़ गया था। घर की दरवाजा मुकेश के लिए बंद था और घर वालों ने बच्ची बहन पर पहरेदारी कर रहे थे। उसे सख्त मना था बाहर जाने को। नौबत यहां तक आई थी कि मुकेश को अब ना अदाकारी में और ना संगीत में दिल लगता था। बच्ची बहन की घर की आसपास घूमते रहते थे कि शायद बच्ची एक बार घर से बाहर कदम रख दे, पर ये नहीं हुआ। और कब तक मुकेश मजनू की तरह घर की आसपास फिरते रहे। पर कैसे दोनों में पहली मुलाकात हुई, मुकेश ने एक तरकीब सोचा। उसे एहसास था कि बच्ची बहन हर सोमवार को अपने पास की शिव मंदिर में पूजा करने जाती है, लेकिन अब वो अकेले नहीं जाती थी। हमेशा उसके साथ कोई ना कोई साथ रहते थे। मुकेश उसे सिर्फ दूर से देखकर अपने आप को तसल्ली कर लेते थे। जब घर वालों को यकीन हो गए कि दोनों आपस को भूल गए, तो बच्ची बहन के साथ मंदिर जाना छोड़ दिए। मुकेश ने इसका फायदा उठाए अपने प्यार से मिलने को। इसी तरह दोनों हर सोमवार को छुपकर मिलते रहते थे। लेकिन दुनिया वालों को दो मोहब्बत भरे प्रेमियों को पल भर की मुलाकात भी बर्दाश्त नहीं हुई, और इन दोनों का छुपकर मिलने की खबर घर तक पहुंच गई। फिर दोबारा बच्ची बहन का घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। मुकेश ने सोचा, मेरा प्यार को कब तक कैद में रखेंगे। ये दूरियां कुछ हद तक बर्दाश्त किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। उनका हौसला बुलंद था। बच्ची बहन पर अब सख्त पहरेदारी थी, यहां तक कि रात को दरवाजे के सामने बैठकर रखवाले करते थे। बच्ची बहन घर की चार दीवारी में कैदी की तरह रात और दिन रोते रहते थे।

से भुलाना। इस गीत से हम महसूस कर सकते हैं कि मुकेश पर क्या बीते होंगे अपनी मोहब्बत से जुड़ा होते हुए। दो प्यार करने वालों को ये जालिम दुनिया वाले कब तक जुदा करते। इतना कोशिश करने की बावजूद इन दोनों प्यार करने वालों को जुदा नहीं कर पाए। एक बात तो सच है, दो प्यार करने वालों की जुदाई में मोहब्बत और मजबूत होती है मिलने के बाद। मुकेश को एक ही सवाल बार बार उठता था कि कैसे बच्ची बहन से मिल सके, और मिलने के बाद उसे फौरन मंदिर में शादी करना चाहते थे। बॉम्बे में अपना तो कोई नहीं था, एक दोस्त था मन्नू भाई त्रिवेदी, वो भी अब उनका दुश्मन था। आखिर वो अदाकार मोतीलाल को अपना राजदार बनाया। मोतीलाल से वो अपना दिल का हाल बतलाए। मोतीलाल को मुकेश की इन बातें सुनकर बड़ा सदमा पहुंचा और कहा कि इतना सब कुछ तुमने अकेले सहा और अब मेरे पास आए हो। मुश्किल की घड़ी में आप ही तो है बॉम्बे में जिसे हम याद करते हैं, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मुकेश ने कहा कि उसे एहसास नहीं था कि दो प्यार करने वालों के बीच इतना कांटे बिछाए जाते हैं। मोतीलाल ने मुकेश की बातों पर एक तरकीब सोचा, जैसे फिल्मों में होता है बिल्कुल उसी तरह। उसने कहा, लड़की पाने के लिए तुमको मेरा कहना मानना पड़ेगा, तुम मौके का इंतजार करना, जैसे मौका मिले बच्ची बहन को खबर पहुंचा देना कि वो सोमवार को शिव मंदिर जरूर आ जाए। ये खबर तो बच्ची बहन के पास पहुंच गई किसी ना किसी तरीके से, लेकिन घर से निकलना नामुमकिन था। उनके हर कदम पर निगाहें थे। करे तो क्या करे, सोमवार को उसे अपने महबूब से मिलना था, मिलकर हमेशा के लिए एक होना था। बच्ची बहन जिद करने लगे, अपने माँ बाप से कहा कि वो सोमवार को सारा दिन व्रत रखेंगी और मंदिर में पूजा करने के बाद अपना व्रत तोड़ेंगे। लेकिन उनके वालिद ये बात से सहमत नहीं था और बच्ची को शिव मंदिर जाने को मना कर दिया। क्या बच्ची बहन सोमवार को शिव मंदिर जा पाएंगे, अपने महबूब से मुलाकात कर पाएंगे? कहानी दिलचस्प है, आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले प्रोग्राम तक।

0: अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान गायक मुकेश जी के बारे में बयान किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। जो बर्दाश्त करने का फन जानता है, वो शख्स जिंदगी की कोई जंग हार नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है।
1: पलकों पे ना तो

मतलब का गाना पेश था मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत रचना, गीत रचना वर्मा मल्लिक का। अपने मर्जी से कहां अपने सफर के हम है, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम है।

फिल्म पाकिजा का नगमा पेश था मौसिकार गुलाम मोहम्मद की मौसिकी और शायर कैफी अजमी का कलाम था। क्यों ना आज बदले रस्मी जहां मोहब्बत को छोड़कर महबूब को आग लगा दी जाए, तो हाँ लगा चुनरी में दाग अब छुपाऊं कैसे।

चुनरी में दाग, फिल्म दिल ही तो है में से ये गीत लिया। स्वर थी मन्ना दे की, संगीत से सवारे थे रोशन और साहिर लुधियानवी का लिखा तर्ज था। इतनी कशिश तो निगाहे शौक में साकी, इधर इधर दिल में ख्याल आए, उधर उधर वो बेकरार हो जाए। ओ बेकरार दिल, हो चुका है मुझको आंसुओं से प्यार।

सदाबहार नगमा पेश था स्वर थी लता मंगेशकर की, संगीत से सवारे थे संगीतकार हेमंत कुमार और कैफी अजमी का लिखा तर्ज था। अगला गीत आइए सुने हेमंत कुमार की आवाज में।

का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। वो नजर यूं उठी यूं झुकी यूं रुकी, हम तो बस थामे जिगर देखते रहे। मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। दुनिया ये कह रही है, क्या कह रही है, कि दीवाना हो गया।

शेराना अंदाज में पेश था ये नगमात ऐश कंवल का मौसिकी लाला सर सत्तार का। अगला नगमा आइए सुने, स्वर है आशा भोसले की।

जी हाँ, कितना हसी है ये जहाँ, खूबसूरत अंदाज में ये गीत पेश था। ओपी नैयर संगीत से सवारे थे, बोल हसरत जयपुरी का। तेरे ख्याल में कुछ ऐसे गुम रहा बरसो, मैं अपने आप से भी मिल नहीं सका बरसो। तुम्हारे हाथ के दस्तक की आस में मोहसिन, मैं अपने घर से कहीं भी नहीं गए बरसों।

तो ख्याल आए। संगीत का रवि का, गीत रचना साही लुधियानवी का, आवाज थी महेंद्र कपूर की। सुबह की किरण आंखें मल मल कर देख रही है। नई सुबह, नया दिन, एक शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। सवेरे का सूरज तुम्हारे

सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, कमाल का नगमा पेश था किशोर कुमार की आवाज में, नगमात इन दीवार का और मौसिकी ओपी नैयर की। अगला नगमा सुनाने को जा रही है मीठी स्वर में लता मंगेशकर।

मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले। खूबसूरत अंदाज में पेश था ये गीत लता मंगेशकर की स्वर में। मंजिल की इंतहा तक कोई बताए ऐ फैज, चला जा रहा हूँ चला जा रहा हूँ और हसरतें बढ़ती जा रही है। ऐ दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है।

अमर गीत पेश था, आवाजें थी सुबीर सैन और लता मंगेशकर की। वो मेरे साथ बहुत दूर तक, वो मेरे साथ बहुत दूर तक सफर में रहा कि उसकी याद का साया, कि उसकी याद का साया मेरे नजर में रहा।

जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मौसिकार मदन मोहन की मौसिकी में पेश था ये नगमा और नगमात राजा मेहदी अली खान का। अब आइए सुने मोहम्मद रफ़ी साहब से ये नगमा।

जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, प्यार का बंधन जन्म का बंधन टूटे ना, क्योंकि क्योंकि मुझ में एक ही तो खूबी है तुमसे बे इंतहा मोहब्बत करना। खयाम की मौसिकी में पेश था ये नगमा। अब आइए सुने ए आर रहमान की मौसिकी में ये दो गाना।

दिल छू लेने वाले नगमा पेश था। आवाजें थी हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की। होती नहीं मोहब्बत चेहरे से, होती नहीं मोहब्बत चेहरे से, मोहब्बत मोहब्बत तो दिल से होती है। तो चेहरा खुद बखुद अच्छा लगता है, कदर जिनके दिल में होती है।

0: U luistert naar Ujala Radio.
1: होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
2: होठों पे सच्चाई रहती है।
3: मुकेश, जो आप सबके प्रिय गायक थे, मेरे बड़े भैया थे। मुकेश भैया एक महान कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं, जब जब पुरानी बातें याद आती हैं।

उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेर इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंदनेल उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो दे अबे प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारी ओर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम मिलाई उजाला रेडियो आपके साथ।